ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन

0: thorough audits and safety certificates for buildings used by the public, including student accommodation, nursing homes and schools. According to fire department figures, building collapses are relatively common in Delhi, with more than 1,000 recorded in the past 3 months alone, causing dozens of deaths. As the court steps in, Delhi University is also under scrutiny for lack of ample hostel facilities. The premier institution houses only 9,000 of the total 350,000 outstation students. Many students who come from outside Delhi to attend South Campus colleges, due to lack of hostel facilities, live in crowded private hostels and paying guest accommodations. Despite bare minimum facilities, cramped spaces and safety issues, owners charge high rent from the students and aspirants.
1: My rent is 13,000. और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 12 पर यूनिट हम देते हैं तो वो 13-14,000 तक चला जाता है. उसके बाद अगर रूम की बात करें तो रूम बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब वी नीड टू एडजस्ट बहुत ज़्यादा, हमको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे जितना बड़ा हम घर में अगर वॉशरूम बनाते हैं, अपने घर में जितना बड़ा हम वॉशरूम बनाते हैं उसमें लोग डबल शेयरिंग, उतने एरिया में लोग डबल शेयरिंग में रह रहे हैं. मैं खुद उसमें डबल शेयरिंग में रह रही हूँ. प्राइवेसी का तो स्टूडेंट का कुछ नाम का चीज़ ही नहीं है. और फिर बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती है कि सीढ़ी चढ़ने में भी लिफ्ट्स भी नहीं है बिल्डिंग्स में. जो यहाँ के ओनर्स है, पीजी ओनर्स, वो आपसे तो इतना अच्छा सिक्योरिटी रेंट लेंगे एक महीने का अलग से, फिर मेंटेनेंस का लेते हैं, मेंटेनेंस पता नहीं क्या करते हैं, आपसे एकदम वेरिफिकेशन करा लेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप अपने पापा से बात कराओ, अपने भैया से बात कराओ, डिफरेंट टाइप का. लेकिन हम तो जो सिक्योरिटी मांगते हैं, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, हम उस चीज़ को देखते हैं, हम किससे पूछे वो चीज़.
0: Amid the uproar and calls for accountability, the inevitable question is this: will the Satyaniketan tragedy wake the government up from its slumber and lead to implementation of safety laws and strict adherence to building codes?
2: Now let's take you to Nepal, where the country continues to battle the aftermath of the deadly flash floods. Here's a report by our correspondent, Saloni Murarka, of The Latest.

0: एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 इयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। फ्रेंड्स, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स, एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड्स जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की हैं। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं। इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Thank you, Honorable Prime Minister, sir, excellencies, distinguished leaders, ladies and gentlemen. With that, we've come to the conclusion of this leaders' session. Thank you all for joining us today. May I request all our distinguished guests